एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ्स गुड।

अजीबो प्रकाश को कई धरती अपराधी को मात्र आश्रय स्थल हो रहा यदि यह धरती दुष्टर को पंजा मुक्त करपराध होना अपराधी होने पर्चा निशाना हम निशाना।

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास पे हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आप

मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं नाच सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, नैना जी थैंक यू, मैं ठीक हो गया, डॉक्टर साहब थैंक यू, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरी टांगें चल सकती हैं, मैं नाच सकता हूँ।

0: कण दिल की होने लगेंगे अब सारे
1: You know it, so sing it. Now throw your hands up and say.

असम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। लुक ये मेरा असम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। अरे शादी

अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में फोन मेरा काटा तो आशिक सरेंडर हुए।